0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग साबित का 6 मिनट।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Flights booked, bags packed, brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, insurancemarket.ie.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Morning, Sahab. It's 18 minutes on this Friday, ki subah 24th of July. And there's just been a notice that's been announced by the Ministry of Interior. And unhone kaha ki ek field exercise they are going to conduct in the Emirate of Ajman. Ajman mein ek field exercise ki timing hai. Friday, aaj subah 7 se lekar 9. So, shuru ho gaya hoga. Agle 2 ghante tak till 9 a.m. And it's going to have field movement of security patrols across several locations. Lekin, hume kya karna hai? Hume kuch bhi nahi karna hai. That is the whole thing. Please do not take any pictures, videos, etc. Stay away from the exercise area and give way to police units for your own safety. And sabse zyada important, ye to blanket ek statement hai, jo hume कंठस्थ कर लेना चाहिए, यानी कि पूरी याद कर लेना चाहिए. एंड दैट इज दैट अवॉइड स्प्रेडिंग रूमर्स एट एनी कॉस्ट और अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन. रिलाई ओनली ऑन ऑफिशियल चैनल्स फॉर अपडेट्स. एक बार फिर हियर्स व्हाट द अपडेट इज. आज सुबह 7 से 9 के बीच इन अजमान देयर इज गोइंग टू बी अ फील्ड एक्सरसाइज. सो प्लीज इफ यू सी सम मूवमेंट आउट देयर, सबसे इंपॉर्टेंट, डू नॉट टेक एनी सॉर्ट ऑफ पिक्चर्स, वीडियोज. शेयर करना तो दूर की बात. एंड द सेकंड थिंग इज, डू नॉट बिलीव और स्प्रेड रूमर्स. हियर्स मरिंदर बत्तर. Yeah, Butter with Zara Khan. This is the Big Breakfast with me. Sid, good morning.

0: खिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मां कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के पैर का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: बिग 106.2।
2: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
3: नमस्ते।
4: ओला।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। नो स्क्रोलिंग, विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
7: Drive home a brand new Jetter. Buy now, pay next year. Zero VAT or zero interest. With EMIs starting from just 966 dirhams per month. Insuremarket.ae. Flights booked, bags packed. Brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, insuremarket.ae.
1: The Big Breakfast, brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: मॉर्निंग नाइस एंड सनी स्टार्ट टू दिस फ्राइडे मॉर्निंग। ह्यूमिडिटी एट 45%, विंड्स ब्लोइंग एट जस्ट 6 किलोमीटर्स पर आवर, 34 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, हाइज ऑफ 37, लोज ऑफ 33 डिग्रीज।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 8:07।
1: Bollywood.

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलरास से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलरास कहाँ है? कहाँ है अलरास?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
2: अलरास है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलरास।
3: नमस्ते।
4: ओला।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो? नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
7: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color. Made in Italy. The Big Mix with Zora. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
8: Are you going to go?
9: Yeah.

0: 92. The beat of Bollywood.
1: मॉर्निंग, इट इज अ फ्राइडे मॉर्निंग. ट्रैफिक की शुरुआत भी काफी हल्के हल्के से होती है. वैसे ही कुछ हाल आज का है. कॉन्ग्रेचुलेशंस 311 E11 पर ही आपको ज्यादा कुछ ट्रैफिक मिलेगा. 5 से 6 मिनट की देर. बोथ दीज आर ट्रीज हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा. इसके अलावा अ बिट ऑफ अनयूजुअल ट्रैफिक एट S117 इंडस्ट्रियल एरिया 3 से जैसे आप साउथ जाएंगे अल्किसेस इंडस्ट्रियल की तरफ, देन यू फाइंड बिट ऑफ कंजेशन आउट देयर. इसके अलावा बेरूत स्ट्रीट का ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है इन बोथ डायरेक्शंस. राइट आउटसाइड मदीना मॉल, बिट ऑफ कंजेशन एट S102 शारजा रिंग रोड. S112 गोइंग टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी सिटी इन शारजा. द ग्रेट न्यूज, 611 एंड 44 पर अभी फिलहाल देयर इज नो कंजेशन. इन केस यू स्पॉट समथिंग, गिव मी अ कॉल इफ इट्स सेफ. 800-1062.
0: Sia, self-drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: Kia. Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: यार थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, बट कन्फ्यूजन कंट्रोवर्सी जब तक नहीं होता तो मज़ा नहीं आता लाइफ के अंदर. सो देर इज़ वन पर्सन जिसके हम सब बहुत बड़े फैन हैं, वेदर यू लाइक हिम और यू हेट हिम, यू कैन नॉट इग्नोर हिम वाली बात है. एंड द कन्फ्यूजन इज कि या तो इनका बर्थडे आज है या तो कल था. मुझे तो एक बहाना चाहिए टू सेलिब्रेट दिस पर्सन बिकॉज ही इज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल पीपल इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक अकॉर्डिंग टू मी इन द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स एटलीस्ट. लेकिन इट्स नॉट जस्ट द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, ये एक पुराना चावल है जिनका बर्थडे या तो आज है या तो कल है. Right, he started composing way back in the early 90s, right? Ek show aata tha jiska naam tha Andaz, and the music was something like this.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा। 106.2
2: The Beat of Bollywood.

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Just to get you up and running for the weekend, I'm looking at a big Bollywood quiz and I've got Ashish with me on the phone line. Ashish, good morning.
2: Hey, hi Sid, good morning. Kaise hain aap?
1: Bilkul badhiya, aap kaise hain yaar?
2: Zabardast. बस वीकेंड की तैयारी हो रही है
1: वीकेंड अरे एक और दिन है काम पे मेरे भाई
2: फ्राइडे ऑलमोस्ट हाफ ऑफिस नहीं आता तो
1: पता है वो रोमांटिक लाइन होती है ना हर एक आई थिंक 60s 70s की बॉलीवुड मूवी में एक लाइन होती है रोमांटिक मूवी में मैंने मन से तुम्हें अपना मान ही लिया मैंने मान लिया तुम्हें मन से अपना बना लिया वैसे ही और फ्राइडे को ना हम लोग ने वीकेंड को अपना बना लिया होता है भाई वी आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप विद द वीकेंड ऑलरेडी
2: सही है आपकी
1: है ना बिल्कुल सही है ना अच्छा एक और बात मुझे पता नहीं कि सही है कि नहीं कि आज एक बहुत ही फेवरेट हमारे म्यूजिक डायरेक्टर का बर्थडे या तो आज है या तो कल है लेकिन मुझे लाइक आई सेड बहाना चाहिए होता है टू टॉक अबाउट दिस पर्सन सो लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ यू नो कुछ क्लूज दिए थे एंड आई मेड यू लिसन टू अ अर्ली 90s का टाइटल ट्रैक ऑफ द शो कॉल्ड अंदाज जो आता था उसके म्यूजिक डायरेक्टर भी ये थे देन लेटर ऑन ही गॉट फेमस फॉर यू नो कंपोजिंग लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स विच बिकेम इंस्टेंट सुपर हिट्स दीपिका पादुकोण मेड हर डेब्यू इन अ म्यूजिक वीडियो ऑफ दिस पर्सन हु आर वी टॉकिंग अबाउट
2: वी आर टॉकिंग अबाउट हिमेश रेशमिया
1: That is the correct answer, yaar. Congratulations.
2: Thank you, sir.
1: Are you a big Himesh fan or not?
2: Mereko inka wo first video jo unhone Deepika Padukone ke saath kiya tha, I still remember that.
1: Nahin, do you remember Himesh or do you remember Deepika in that? Or what do you चलो फिर क्योंकि द वीकेंड जस्ट अराउंड द कॉर्नर साथ मिलकर हम लोग एक हिमेश गाना गाएंगे बिकॉज वी वांट द वीकेंड टू स्टार्ट विद अ लॉट ऑफ एनर्जी लॉट ऑफ जुनून ऑन द काउंट ऑफ थ्री लेट्स डू अ बिट ऑफ अ हिमेश जुनून ऑलराइट रेडी 1 2 3 जुनू जुनू जुनू जुनू जुनू जुनू very good that is Ashish's mashup of Junu and Surur specially dedicated to Himesh Reshamiya's birthday Ashish have a fabulous weekend ahead and aapne jeete hain 2 open movie tickets in the big Bollywood quiz enjoy yourself at the movies
2: Thank you, sir.
1: Take care, Ashish. Enjoy. That is Ashish, hamare aaj ke winner hai in the big Bollywood quiz. Roz subah ye mauka aapke paas to flex a bit of your Bollywood muscle and walk away with 2 open movie tickets. Yes, Pati Patni aur Vodo. On Big 106.2, a part of the Funny Share Network.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 9:07।
1: Bollywood.

0: 106.2. The Beat of Bollywood.
1: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें। सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल, जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
2: नमस्ते।
3: ओला।
2: अस्सलामुअलैकुम।
4: बोंजूर।
5: नी हाओ।
6: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
7: Big with big ticket.
8: 20 million dirham grand prize.
7: 1 million dirham big spin chance.
8: 5 consolation prizes and weekly e-draws.
7: Buy now at bigticket.ae.
9: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
0: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color. Made in Italy.
10: Lagta hai barf padne wali hai.
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
12: गुड मॉर्निंग, इट्स 34 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी क्वाइट मैनेजेबल 44%, पर आज विंड्स ब्लोइंग एट 5 किलोमीटर्स पर आवर, हाइज ऑफ 37, लोज ऑफ 33 डिग्री सेल्सियस।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2। बिग 106.2। सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.in।

0: Sia self-drives new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding. The Big Mix with Zora. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
4: Morning, अब जाकर ट्रैफिक बढ़ना शुरू हुआ है अलखेल रोड पर E44 going towards Business Bay from D3. There's a bit of congestion Dubai Alain Road 66 as you cross Al Jadaf. Then there's the usual S102 Sharjah Ring Road पर mostly heading east and then there's S112 Sharjah Industrial 6 going into Maliha Street, S116 University City की तरफ and 311 E11 heading south going towards Dubai from Sharjah. Both these arteries you'll find a 7 to 8 minute delay.
3: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
5: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 10:07।
1: Bollywood.

0: of Bollywood.
1: Flights booked, bags packed, brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, insurancemarket.ie.
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
3: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
4: मॉर्निंग 36 डिग्रीज सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी क्वाइट मैनेजेबल 42%, पर विंड्स ब्लोइंग एट जस्ट 3 किलोमीटर पर आवर, हाइज ऑफ 37, लोज ऑफ 33 डिग्रीज.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट alras.me. बिग 106.2.
5: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही.
6: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरा, बट प्लान होगा आपका. फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, tune in to the big recommends every Sunday 3 to 6 p.m. kyunki agar Zora ne best keh diya to bas keh diya.
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Zora, only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2 song of the hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: The Beat of Bollywood. Great news, Ajman. A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward, plus exclusive member discounts. Safir Market. More choices, more savings, more reasons to shop. Listen to her every day.
1: Mugambo!
2: We're talking about the story which has come from UP, जहाँ पे जीजा जी ने बोला 50,000 नहीं दे सकता जूता छुपाई के लिए, 5,000 ले लो. उनकी सालियों ने उन्हें कमरे के अंदर बंद करके धुलाई की है उनकी, पिटाई की है उनकी. Right now I've got Nigar with me. You're on the other side. आपने वसूली की है किसी जीजा से?
3: वसूली करनी चाहिए है, but my जीजा was so conjuice. He had to just give away the shoes.
2: How much did you ask?
3: 5,000. 20 years back.
2: Rupees or dirhams?
3: Dirhams.
2: 5,000 भी नहीं दिए?
3: नहीं, 5 दिरहम भी नहीं दिए.
2: ओए होए होए.
3: I don't know if he's listening. He listens to your show. I don't know if he's listening. He's going to kill me.
2: जीजा जी प्लीज कॉम्पेंसेट, ये साली इज कम ऑन एयर एंड इज कंप्लेनिंग. यार लोग एक एक दो दो लाख दे चुके हैं 10 साल पहले. माय जीजू डिड नॉट इवन गिव मी 5,000 रुपीज. तो देखो जीजे को अंदर बिठा के पिटाई कर दी है सालियों ने. तो यू एक्चुअली आर अ गुड साली हु डिड नॉट रिजॉर्ट टू दैट.
3: अभी जीजे की रेडियो पे पिटाई हो चुकी है.
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
4: Hey, jaldi hata, tera khatana. Chal hata. Arey jaldi hata, yaar sunna.
0: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: All right, there's some unusual traffic on 311. Usual jagah par traffic hai, lekin northbound traffic, and this is as soon as you cross city center Mirdif, going in the direction of सिटी सेंटर जाइया इंडस्ट्रियल एरिया 15 की तरफ जाता हुआ ये ट्रैफिक आपको मिलने वाला है. देयर हैज बीन एन इंसिडेंट बीइंग रिपोर्टेड. इसकी वजह से कुछ एटलीस्ट 6 से 7 मिनट एक्स्ट्रा आप वहां पर बताएंगे. इन केस यू नो मोर अबाउट दिस और एनी अदर ट्रैफिक सिचुएशन, इफ इट्स सेफ टू कॉल, गिव मी अ कॉल ऑन 800-1062.
0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
6: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस से मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ.
7: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: to The Beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae.
2: मैंने देखा कि जब भी कोई फ्राइडे होता है, बाय रूल अबू धाबी का ट्रैफिक इज वेरी वेरी वेल बिहेव्ड, बट नॉट सो मच इन दुबई शारजा. एक अनयूजुअल ट्रैफिक सिचुएशन, एंड दिस इज एज सून एज यू क्रॉस सिटी सेंटर मिर्जापुर गोइंग नॉर्थ गोइंग टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल एरिया 15 एट 311. उल्टी दिशा में आज ट्रैफिक है. यहाँ पर बचाएंगे आप एटलीस्ट 5 से 6 मिनट एक्स्ट्रा. इसके अलावा हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा तो 311 E11 पर ट्रैफिक है ही. E11 अल नादर इंटरचेंज 1 इज क्वाइट बिजी, एंड देन देयर इज अ बिट ऑफ कंजेशन आज देरा में. देरा क्लॉक टावर की तरफ जाता हुआ ट्रैफिक है, एंड देन देयर इज ऑल्सो D78 पर ट्रैफिक. D89 इज ऑल्सो अ बिट कंजेस्टेड दिस मॉर्निंग. And the good news is that there's no congestion on 611 Emirates Road, and 44 is also quite well behaved. 2-3 minute ki der aapko zarur milegi, and this is going towards Business Bay from D3 on 44. In case you spot something, and if it's safe to call, call me on 800-1062.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: और इसके साथ आज के समाचार समाप्त हुए. इट्स टाइम फॉर मी टू हेड आउट ऑफ द स्टूडियोज एंड गो एंड एंजॉय माय वीकेंड. यार सोचो 11 भी नहीं बजे और मेरा वीकेंड शुरू हो गया. आप थोड़ा सा जल्दी आई एम गोना सी यू ऑन मंडे मॉर्निंग ऑन द शो दैट गेट्स यू अप एंड रनिंग. एंड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद शो टाइम्स हैव चेंज्ड. इट्स 7 to 11 इंस्टेड ऑफ 6 to 10 जस्ट इन केस यू बैक फ्रॉम अ वेल डिजर्व वेकेशन. दैट इज द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इन द वर्ल्ड ऑफ बिग 106.2 के 6 से 10 आप यू यूज्ड टू लिसनिंग टू मी बट नाउ इट इज 7 to 11. ऑल योर फीडबैक इज मोर देन वेलकम. यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल्स. वी आर 106.2 बिग एफएम, 106.2 बिग एफएम. वहां पर यू कैन फॉलो अस इफ यू डोंट ऑलरेडी. क्या कर रहे हो यार, करो हमें फॉलो. एंड आई एम सिट सेट SIDSETH. आई एम गोना सी यू ऑन मंडे. टिल देन एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर वीकेंड. बाय बाय.
2: Authentic, original, and better than our rivals.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड, द बिग मिक्स विद ज़ोरा, वीकडेज 1 to 5 PM, ओनली ऑन बिग 106.2, ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae. Big 106.2. That's My Song by E. End.

0: Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा सज्जादेरा रसल खोर अलकूज गुसेस अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
3: चार या
2: पांच?
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड आफ्टरनून, द टाइम राइट नाउ 1:05।
2: Bollywood.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 37 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 33, फिलहाल ह्यूमिडिटी है 63% पर।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2 big 106.2

0: شاید تو میں بھی شریف ہوا تھا اور شرافت سے اپنی کمی نہیں بنا. ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ ہم سے بڑا شیطان کون پیدا ہو گیا.
1: Big 106.2 The Beat of Bollywood The Big Mix Brought to you by InsuranceMarket.ae
2: InsuranceMarket.ae
1: Listen to her every day.
2: Mugembo! खुश हुआ.
3: वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरी व्हिच हैज कम फ्रॉम यूपी, जहां पे जीजा जी ने बोला 50,000 नहीं दे सकता जूता छुपाई के लिए, 5,000 ले लो. उनकी सालियों ने उन्हें कमरे के अंदर बंद करके धुलाई की है उनकी, पिटाई की है उनकी. राइट नाउ गॉट निगार विद मी, यू आर ऑन द अदर साइड. आपने वसूली की है किसी जीजा से?
4: वसूली करनी चाहिए है, बट माय जीजा वाज सो कंजूस, ही हैड टू जस्ट गिव अवे द शील्ड.
3: हाउ मच डिड यू आस्क?
4: 5,000. 20 इयर्स बैक.
3: रुपीस और दिरहम्स?
4: दिरहम्स.
3: 5,000 भी नहीं दिए?
4: नहीं, 5 दिरहम भी नहीं दिए.
3: ओए होए होए.
4: I don't know if he's listening. He listens to your show. I don't know if he's listening. He's going to kill me.
3: जीजा जी प्लीज कॉम्पेंसेट. साली इज कम ऑन एयर एंड इज कंप्लेनिंग. यार लोग एक एक दो दो लाख दे चुके हैं. 10 साल पहले माय जीजू डिड नॉट इवन गिव मी 5,000 रुपीज. तो देखो जीजे को अंदर बिठा के पिटाई कर दी है सालियों ने. तो यू एक्चुअली आर अ गुड साली हु डिड नॉट रिजॉर्ट टू दैट.
4: अभी जीजे की रेडियो पे पिटाई हो चुकी है.
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: It's Friday afternoon. There's not much traffic. Halka pulka traffic is waqt aapko Hyacinth Street pe milega. Not really bad. 8 to 10 minute delay. There's some traffic that I see from Marina going towards JBR. And a 15 to 17 minute delay if you're on the Sheikh Mohammed bin Zayed. Anything else? Anything unusual you'd like to report? Mujhe bata sakte hain 800-1062 par.
5: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. This is The Big Mix on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae

0: बुड्ढे
1: नमस्ते।
0: पहले आप वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं होंगे।
1: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा? आप बात बताइए।
0: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा।
1: नहीं नहीं नहीं, आप तो खामखा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
0: गुस्सा आ जाएगा, आपका आ रहा, गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है देखिए।
1: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Where's your next adventure taking you? Live streaming from a safari trip, posting pictures from a trekking adventure, or FaceTiming your family from a remote island. Whatever your adventure looks like, there's a data and calling plan made for you. With Roam Like Home, use your local data and minutes abroad, starting from just 100 dirhams. Roam Like Home with Freedom Plans. To subscribe, visit the E& UAE app or our website. T's and C's apply. E&. Go for more.
2: 106.2.

जब ये गाना आया था मुझे पता था कि ओवर टाइम पीपल वुड लव द सॉन्ग एंड आई लव्ड इट द मोमेंट आई सॉ द मूवी इन द थिएटर एंड ये गाना आया. देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट ए आर रहमान क्रिएटिंग अ सूफी नंबर फॉर एनी मूवी, चाहे वो पिया मिलेंगे हो रंजना का या फिर दीवाना दीवाना फ्रॉम तेरे इश्क में. Playing in your favorite music and keeping you company, I'm Mansi. This is The Big Mix and Big 106.2, The Beat of Bollywood. And of course, the actor that I was talking about, Ranbir Kapoor. Bahut sare sahi jawab. In fact, kafi sahi jawab aaye. So yes, Ranbir Kapoor, the Bollywood undercover actor, jinka koi official Instagram hai nahi. He's obsessed with the number 8. He played a guy who literally refused to wake up until Konkana came along. Wake up suit ki main baat kar rahi thi. Absolute Bollywood royalty. To bahut sare sahi jawab aaye hain. तो आपकी बॉलीवुड नॉलेज कमाल है. अब किसी ने कहा है कि मैंने गेस तो कर दिया, अब एक रणबीर कपूर का गाना सुना दो. तो चलो, विल प्ले यू दिस वन. रणबीर का ही डेब्यू हुआ था इसके साथ, राइट हियर ऑन ब्रेक 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 2:05।
2: Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। हाँ जी, द टाइम राइट नाउ 3:06।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: नमस्ते।
4: ओला।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
2: The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding. Listen to her every day.
7: Mugembo!
3: We're talking about the story which has come from UP, जहाँ पे जीजा जी ने बोला 50,000 नहीं दे सकता जूता छुपाई के लिए, 5,000 ले लो। उनकी सालियों ने उन्हें कमरे के अंदर बंद करके धुलाई की है, उनकी पिटाई की है उनकी। Right now I've got Nigar with me. You were on the other side. आपने वसूली की है किसी जीजा से?
8: वसूली करनी चाहिए हाँ। But my जीजा was so confused.
3: How much did you ask?
8: 5,000, 20 years back.
3: Rupees or dirhams?
8: Dirhams.
3: 5,000 bhi nahi diye?
8: Nahi. 5 dirham bhi nahi diye.
3: Ay, hoy, hoy,
8: I don't know if he's listening. He listens to your show. I don't know if he's listening. He's going to kill me.
3: जीजा जी प्लीज कॉम्पेंसेट, साली इज कम ऑन एयर एंड इज कंप्लेनिंग। यार लोग एक एक दो दो लाख दे चुके हैं, 10 साल पहले माय जीजू डिड नॉट इवन गिव मी 5,000 रुपीज। तो देखो जीजे को अंदर बिठा के पिटाई कर दी है सालियों ने, तो यू एक्चुअली आर अ गुड साली हु डिड नॉट रिजॉर्ट टू दैट।
8: अभी जीजे की रेडियो पे पिटाई हो चुकी है।
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. This is The Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
3: 37 degrees, low tide around 33. Filhal humidity hai 48%.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Drive home a brand new Jetter. Buy now, pay next year. Zero VAT or zero interest. With EMIs starting from just 966 dirhams per month.
1: Big 106.2.

वीकेंड वाली फील, वीकेंड वाला माहौल, राइट हियर ऑन बिग 106.2, ये है बिग मिक्स, मानसी कमिंग अप। इसी के साथ टेकिंग यू टू अर्ली 2000s, अगेन अ मूवी जो मैंने देखी नहीं है, बट गाने, इनफैक्ट द एंटायर एल्बम वाज फैंटास्टिक। लारा दत्ता इरफान एंड ऑफकोर्स शाहरुख हैड अ मेजर पार्ट इन द मूवी, समहाउ आई हैवंट सीन द मूवी येट, एंड हर गाने में दे हैड अ बॉलीवुड एक्ट्रेस, खुदाया खैर में प्रियंका चोपड़ा, दिस वन हैड दीपिका पादुकोण एंड शाहरुख, मरजानी हैड करीना एंड शाहरुख, ब्रिलियंट एल्बम कमिंग अप नेक्स्ट।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 4:05।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 37 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 33। फिलहाल ह्यूमिडिटी है 48% पर।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2 Big.

0: to the beat of Bollywood. Wow, your hair color looks stunning.
1: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
0: Yeah, right.
1: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
0: Really?
1: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
0: I'm buying it right now.
1: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
2: Missed your morning buzz?
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा।
2: ये सुनो।
4: ब्रेकफास्ट में तो मैंने जो है एक ऑमलेट खाया था एंड देन ऑफ कोर्स पराठा, द वी लव पराठा।
5: ऑमलेट पराठा
4: मुंबई,
5: साथ में थोड़ा सा चिली सॉस या ग्रीन चटनी है?
4: नॉट, साथ में द वाइफ लव।
5: भाई बहुत ही चीजी था, चीज ऑमलेट तो नहीं था कहीं?
4: वेरी
5: चीजी ऑमलेट आपके डायलॉग की तरह बिल्कुल, पर अच्छा था चीजी था लेकिन अच्छा था। दिन की अच्छी शुरुआत हुई, ऐसे ही मक्खन मारते रहो, चीज लगाते रहो, तब जाकर दैट इज द की टू ऑल सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स। आपने कहा कि आप बहुत ही बड़े फिल्म फैन हैं, तो सबसे बड़ा टेस्ट तो आजकल यही है, क्या आपने वो काम किया जो करना हर कोई चाहता है लेकिन बहुत कम लोग कर पा रहे हैं? डिड यू गो एंड सी द ऑडिसी? टिकट्स मिले? मतलब यू आर वन ऑफ दोस पीपल जो कि प्री प्लानिंग करते हैं, दैट इज द ट्रू प्रूफ दैट यू आर अ बिग बिग फिल्म फैन।
4: थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स वी प्लान अबाउट लाइक 3 weeks earlier, then we should go for the same day. And we found the ticket and it was, I can say, the show was completely full.
5: Yeah.
4: And it was a fantastic movie. The movie was not all about the battle, it's about the survival.
5: Kya
4: so that was a fantastic movie.
2: Energy and action. Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
6: Hey, jaldi hata tera khadana.
2: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
7: It's a Friday evening, not really big traffic. Thoda bahut traffic near Festival City at the moment. There is a 8 se 10 minute ka delay. Also, a bit patchy on the Sheikh Zayed Road near DIFC Business Bay going towards Dubai Mall. And iske alawa, I hardly see any traffic. Agar aap kuch unusual report karna chahte hain, do get in touch 800-1062 par.
2: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.com.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:06।
2: Bollywood.

0: सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची कैसी कहाँ मिलेगा बताना।
3: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
2: अलरास बोले तो
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
2: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
4: नमस्ते।
5: ओला।
4: अस्सलाम वालेकुम।
6: बोंजूर।
7: नी हाओ।
6: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
8: Wow, your hair color looks stunning.
9: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
8: Yeah, right.
9: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia free and enriched with henna extract and argan oil.
8: Really?
9: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
8: I'm buying it right now.
9: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: फ्राइडे की शाम है, वीकेंड वाली फील है, बट मेरी शाम बना दी है विकी ने. एंड ही जस्ट कॉल्ड, उसे नंबर ही नहीं पता था हमारा, 800-1062. एंड आई थिंक मेरी मम्मी के बाद अगर कोई मेरी आवाज सुन के इतना खुश हुआ है, दैट इज विकी. विकी थैंक यू सो मच. हाय विकी, यू आर मेकिंग मी फील सो नाइस. मैं बहुत खुश हूँ कि आपसे मेरी बात हो रही है. यू वेरी स्वीट. क्या करते हैं विकी आप?
2: मैं आईटी में इंजीनियरिंग मैंने की है और एज ए सुपरवाइजर मैं लीड कर रहा हूँ एक टीम को. हम रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स बनाते हैं चार्जा एयरपोर्ट पे, मतलब फ्री जोन में.
1: वेरी नाइस.
2: बट आई एम सो हैप्पी यार, छोड़ो सारी चीजें, मेरी आपसे बात हो गई. अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था भाई कभी बात नहीं होगी आपसे.
1: क्यों मैं टोल फ्री नंबर है?
2: अरे वो भी मिला है, वो भी बन रहा है, मतलब कि वो कोई पिकअप नहीं कर रहा और वॉइस मेल पे इतना फुल है. वो बोल रहा है आप वॉइस मैसेज नहीं सेंड कर सकते भाई, मैनेजर रहने दे यार.
1: यार आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मैं आपको खुद कॉल करती हूँ 106.2 बिग एफएम पे. इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है मुझसे बात करने की, मैं तो यहाँ रहती हूँ शाम को.
2: और सीरियसली मैं तो पूछ रहा था मेरा बैलेंस कम है, अब मैं बैलेंस में बैलेंस भी कर रहा हूँ, बैलेंस भी ज्यादा है, कॉल पे भी वो बोल रहे हैं. फिर आज जब आपने मुझे नंबर बताया ना ऑन एयर, मैं सुन रहा था तो मैंने कहा मुझे लग रहा है मैंने नंबर गलत डायल किया है ना, वो देखा तो सच में गलत.
1: आज तक कोई लड़का मुझसे बात करके इतना एक्साइटेड नहीं हुआ है जितना भी की हुआ है. मुझे बहुत मजा आ रहा है.
2: अरे सीरियसली ज़्यादा मैं खुश हूँ, मुझे लग रहा था इस जमाने में तो बिल्कुल बात नहीं
1: होगा. ऐसा कैसे, क्या बात कर रहे हो विकी, मैं रोज बात कर लूंगी तुमसे, तुम बस बात करने वाले बनो.
2: अरे थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू. बट सच में ना मतलब मैं वही सोच रहा था कि मैंने कहा मैं अब क्या बताऊँ, मैं मेरे पास लव्स ही खत्म हो गए. मैंने आपके वेबसाइट पे नंबर ढूंढा, गूगल में ढूंढा, बट नंबर ही नहीं मिला.
1: अब सेव कर लो 800-1062, ठीक है, यह हमारा नंबर है.
2: अभी मैं इसको सेव करूंगा. और आप गाना नहीं सुनेंगे आज?
1: ऑफ कोर्स सुनू, मैं सुनाऊंगी नहीं, आप मुझे गाना सुनाइए. अभी तो हमने कार्योकी की शुरू नहीं किया है, बट आज आपका जो दिल चाह रहा है आप वो मुझे वो सुनाओ, क्योंकि आपने मेरी शाम बना दी है, तो आप जो गाना चाहते हैं गाएं.
2: अरे अरे अरे मेरा गाना, मेरे तो बहुत सारे गाने फेवरेट्स हैं, अभी कौन सा वाला सुनाऊं, बहुत सारे गाने.
1: मेरे लिए कोई गाना गा दो.
2: बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार कर.
1: मैं ना बड़ी सॉफ्ट दिल की लड़की हूँ विकी, मुझे सच्ची में प्यार हो जाएगा फिर पछताना नहीं.
2: नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. बहुत हो गया यार, ये बड़ी बात है मेरे लिए.
1: क्या कह रहे हो, बहुतों से किया है तो ये नई बात नहीं है मेरे लिए?
2: अच्छा मैंने बहुतों से नहीं, मैंने कहा बहुत मेरी बात होगी, मैं बहुत खुश हूँ सच में.
1: हाय मैं तो आज रात को सो ही नहीं पाऊंगी, रात को मेरे कानों में विकी की आवाज गूंजेगी, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम. थैंक यू विकी यार, मेरी शाम, मेरा पूरा वीकेंड आपने बना दिया है. गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू सो मच. ओके बाय
1: बाय. यू नो देयर सर्टेन थिंग्स, आप अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो, किसी से खुश होकर बात कर लेते हो, इट ऑटोमेटिकली चेंजेस योर वाइब. फिलहाल द वाइब इज यू विल सिंग एंड आई एम गोना गिव यू अ ट्रैक व्हेन आई कम बैक. इट्स टाइम फॉर द कैरियोकी.
0: बिग 106.2.
3: Sia self-drives new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
4: This summer, there are surprises all across Dubai waiting to be discovered.
3: More offers, more experiences, more reasons to celebrate. With E&, the strategic partner of Dubai Summer Surprises, enjoy up to 70% off on devices and accessories from 2nd of July to the 30th of August. Learn more at www.e&.ae. T's and C's apply. E&, strategic partner of Dubai Summer Surprises. E&, go for more.
0: The Big Jill.
4: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Honestly, not really big, but a 25 to 30 minute delay if you're on the Sheikh Mohammed bin Zayed Motorway to Mahesna. There is very, very slow moving traffic is with Festival City and Nadal Hamar ke paas. Iske alawa 15 se 20 minute ka delay Sheikh Zayed pe dikha raha hai, and still slow moving if you're on the Al Quds 4. Anything else you'd like to report, let me know. 800-10625.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
5: Sardar Khan naam hai hamara. Bata dijiyega sabko.
6: Koli nahi marenge sare ko. Keh ke lenge uski.
0: Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: The weekend is here, Friday Kisham, and while you're heading back home, or probably you're out and about, we sing every evening. Main kehti hoon, while you're in the jam, we jam. Awaaz aapki, audience meri, time for the karaoke.
0: Karaoke.
1: अब यहाँ पे परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं लेना है. गाना आए या ना आए, माहौल बनना चाहिए. तो अगर आप माहौल बना सकते हैं, देन दिस इज योर ट्रैक आशाम.

0: अगर आपने गाना पहचान लिया, बट आई एम श्योर पहचान लिया होगा, देन 800-1062 इज द नंबर फॉर कारियोके. यहाँ पे आके ये गाना गाना है, दैट्स इट, माहौल बनाना है. राइट ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड, कीपिंग यू कंपनी एंड मानसी.
1: Beat 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हां जी, ये है बिग थ्रिल मानसी। फ्राइडे की शाम है, वीकेंड वाली वाइब है एंड वी आर कारियोकिंग। जॉइनिंग अस इज अशफाक। मुझे वो मूवी याद आ गई, कभी खुशी कभी गम, याद है आपको अशफाक मियां?
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्या करते हैं अशफाक मियां आप?
2: वर्किंग विद वन फुटवेयर कंपनी।
1: आर यू नॉट वेरी हैप्पी?
2: नो व्हाई?
1: साउंड लाइक वर्किंग विद अ फुटवेयर कंपनी। तो वीकेंड आ गया, क्या प्लान है वीकेंड का?
2: नहीं, हमारा वीकेंड नहीं होता है, इंडियन कंपनी तो सैटरडे भी वर्किंग रहता है।
1: ये मैंने नहीं कहा, ये अशफाक मियां ने कहा है। चलो कोई बात नहीं, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना इन जिंदगी वर्क होना बहुत जरूरी है, सो ग्रेटफुल रहना चाहिए।
2: बिल्कुल।
1: तो आप गाना गाते हैं अशफाक?
2: गाना तो नहीं गाता हूँ, लेकिन गाना चलता है तो उसके साथ गुनगुना लेता हूँ।
1: गुनगुना लेते हो, मेरी ऑडियंस भागेगी तो नहीं ना, बस इतनी कोशिश करना, ठीक है? तो आज सुनते हैं अशफाक की सुरीली आवाज में। गाइए।
2: कुछ ना कहो, कुछ भी कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, तुमको पता है, हमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है।
1: और इस पल में
2: कोई नहीं है,
1: बस एक मैं हूँ। कभी गाया लड़की के साथ डुएट आपने अशफाक?
2: नहीं,
1: मजा आया नहीं आया? दोनों बाथरूम सिंगर जो है गा रहे साथ में। अशफाक बुरा नहीं गाया आपने, अच्छा गाया। थोड़े लिरिक्स जो है वो यहाँ वहाँ इधर उधर हो गए, बट मजा आया नहीं आपको?
2: थोड़ा अंडर वेदर हूँ इसलिए थोड़ा खुल के नहीं आया।
1: अरे ये तो प्रॉपर सिंगर की तरह, आज गले में थोड़ी सी हरारत है। कोई बात नहीं, अगली बार एकदम गला खोल के गाइएगा, आज आपने माहौल तो बनाया है। हैव अ ग्रेट वीकेंड। ओके,
2: थैंक यू।
1: बाय अशफाक।
2: बाय बाय। बाय।
1: This is what we do. It's not about singing. It's about enjoying. तो अगर आप भी कार्योके करना चाहते हैं तो कुछ मत कहिए, सिर्फ कॉल कीजिए 800-1062 पे।

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Bringing in the weekend, Mansi, right here on Big 106.2, The Beat of Bollywood. We are karaoke-ing. वैसे अगर आप भी गुनगुनाने का शौक रखते हैं, you can register karaoke अपना नाम to 0543091062. We've got Murtaza. Good evening.
2: Good evening, Mansi.
1: कैसे हैं Murtaza जी? ये तो India's Got Talent बना दिया है आपने. हफ्ते में एक बार तो आप ही गाते हो.
2: ये दूसरी बार है. एक तो मेरी आदत है, मैं गाड़ी में भी गुनगुना रहता हूँ. बट आज जो आपने गाना रखा है, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट, तो मैंने सोचा कि आज भी कॉल करी लूँ.
1: वेरी नाइस. तो ये किसके लिए गुनगुनाते हैं आप? कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो.
2: आपको मैंने मेरी लव स्टोरी लास्ट टाइम कहा था कि मेरी
1: वाइफ आपको मिली थी लोकल ट्रेन में.
2: एग्जैक्टली, लव इन अ ट्रेन. तब जो भी गाता हूँ उसी के लिए गाता हूँ.
1: वेरी नाइस. कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, बीवी को समझाना बहुत मुश्किल होता है. बट आई होप यू आर डूइंग वेल. विदाउट फर्दर अडू, अ मैन जिन्होंने अपनी वाइफ को अपनी आवाज से इम्प्रेस किया था.
0: Karaoke.
1: जी
2: कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना

0: ए, तुमको पता है समय का ये पल हम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो।
1: वाह, मजा आ गया मुर्तजा, मजा आ गया। यू नो व्हाट, जब मेरी मॉम यहाँ आएंगी ना, उनको कैरियोके का बहुत शौक है, तो फिर मैं एक पार्टी रखूंगी जिसमें मैं आपको बुलाऊंगी। आप दोनों के बीच ना माइक की लड़ाई हो जाएगी, दोनों के बीच।
2: आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन अगर आप मुझे बुलाओगे तो।
1: कैरियोके, एंड आई थिंक यू बोथ विल एंजॉय सिंगिंग सॉन्ग्स टुगेदर। सो थैंक यू सो मच मुर्तजा फॉर मेकिंग माय एंड मेरे सभी सुनने वालों की इवनिंग। यू हैव अ ग्रेट वीकेंड।
2: थैंक यू मांसी, थैंक यू वेरी मच। बाय।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:09।
2: Bollywood.

0: Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, ये है Big Thrill, Mansi. We playing the 5-second rule. It's a fun game. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ categories, तीन चीजें बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर. Joining us right now is Pallavi. And Pallavi is saying कि मेरी कॉलीग बैठी है. मैंने कहा देखो मेरा फोन हमेशा लग जाता है. ये बात तो सही है, पल्लवी का फोन हमेशा लग जाता है.
2: थैंक यू सो मच मानसी, थैंक यू सो मच
1: पल्लवी. नहीं थैंक यू सो मच के मतलब कोई मेरे लिए भी फ्लेक्स कर रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये. So how was your day? कहाँ जा रही हो with colleagues? Are you guys carpooling?
2: Yes, absolutely. But yeah, we had some work, so we are heading back to business day, and the traffic is as you said crazy.
1: What plans? Weekend is right here.
2: Nothing, Amansi. Nothing much. But yes, कुछ ना कुछ तो करेंगे. Probably इतनी गर्मी है तो कहीं बारिश की जगह तो जा नहीं सकते. Unfortunately, बस
1: यार weekend पे travel कर लेते हो?
2: अच्छा
1: मुझे लगा कि ऐसे क्या आज क्रोसॉ खाना है तो हम फ्रांस जा रहे हैं वीकेंड के लिए, यू नो देसी ब्लिंग. फिलहाल वी विल प्ले द 5 सेकंड रूल. इट्स अ फन गेम, यू नो द रूल्स. यू गेट 5 सेकंड्स. आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर.
0: 5 सेकंड रूल.
3: ओह या.
1: 3 food items दैट स्टार्ट विद द लेटर पी.
2: 3 food items.
1: हाँ.
2: पानी.
1: 3 food items with P. तो कह रही है पानी, पिज्जा, पराठा, पास्ता. मूविंग ऑन. 3 बॉलीवुड एक्टर्स जिनका नाम M से शुरू होता है.
2: मिथुन दा
1: और
2: महेश बाबू.
1: महेश बाबू. 5 सेकंड के अंदर जवाब देना है, फटाफट खेलने वाला गेम है. 3 things that you absolutely want to change about your colleagues. अरे मजा. Why not?
2: This is a tough part.
1: Why not?
2: 3 things are gossip, all gossip and all gossip. My God, nothing more than gossip.
1: अच्छा आपके ऑफिस में सिर्फ गॉसिप चलती है?
2: I wish everything that. बहुत चलती है.
1: बहुत बढ़िया.
2: It's fun gossip.
1: I know, workplace without gossip is not a healthy workplace, I truly believe. But you have to play very, very quickly, okay? 3 things that are a big red flags for you in a relationship.
2: झूठ बोलना, dishonesty, late आना और dress up अच्छे से होना.
1: तो आपको मिल गया है रेड फ्लैग, मतलब ग्रीन फ्लैग.
2: एक कभी एक मिलता है, कभी 2 मिलते हैं, 3 एक साथ मिल नहीं पा रहे अभी तक.
1: क्वालिटीज या बंदे एक साथ 3 ढूंढ रही है?
2: नहीं नहीं मानसी, इतना कैपेसिटी नहीं है. एक ही बंदा जिसमें 3 आ जाए.
1: आई थॉट ये 3 अलग-अलग ढूंढ रही है.
0: 5 सेकंड रूल.
3: ओह या.
1: I would love to be your friend. के यार एका तो यहाँ भी भेज दो, बहुत टाइम हो गया है. बट पल्लवी आज बहुत खराब खेला. That's not nice.
2: Yeah, no worries.
1: That's not nice at
2: too
1: all.
2: Too much traffic.
1: too much traffic.
2: Stressful traffic.
1: But it's always fun talking to you. What's your colleague's name?
2: Jovita, and she's sitting next
1: Hi,
2: to me.
1: Hi, Jovita. She, does she have green flags, red flags?
4: Hello. No, not at all.
1: So you both are single?
4: Yes, absolutely.
1: I think half of the girls I know are single. So, हाँ यार मैं भी अपनी friend के साथ ही घूमती रहती हूँ. How are you guys finding boys? कहाँ जा रहे हो बाहर?
2: हम लोग शायद अभी तो वापस जा रहे हैं, बट प्रॉब्ली वीकेंड रसल खेमा.
1: रसल खेमा में कौन मिलेगा?
2: अरे ढूंढने के लिए तो चिराग मुझे ढूंढना पड़ेगा, फिर भी मुझे लगता है मुश्किल होगा.
1: मुझे लगा ये रसल खेमा में जा रही है ढूंढने के, बस अब हो गया मेरा दुबई से. आई सेड इट्स वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इट वोंट लास्ट फॉर लॉन्ग. चलो यू गर्ल्स हैव अ ग्रेट इवनिंग, ड्राइव सेफ, एंड इट वाज ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू पल्लवी. हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय.
5: A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward plus exclusive member discounts. Safir Market. More choices, more savings, more reasons to shop.
0: The Big Jill.
6: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. brought to you by insurancemarket.ae.
3: This summer, drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package and a 1 million kilometer warranty. With EMI starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. Missed your morning buzz? Yes or no?
7: Breakfast में तो मैंने जो है एक ऑमलेट खाया था एंड देन ऑफ कोर्स पराठा द वी लव पराठा
8: ऑमलेट पराठा मुंबई साथ में थोड़ा सा चिली सॉस या ग्रीन चटनी या
7: नॉट साथ में द वाइफ लव
8: बहुत ही चीज़ी था चीज ऑमलेट तो नहीं था कहीं वेरी चीज़ी ऑमलेट आपके डायलॉग की तरह बिल्कुल पर अच्छा था चीज़ी था लेकिन अच्छा था दिन की अच्छी शुरुआत हुई ऐसी मक्खन मारते रहो चीज लगाते रहो तब जाकर दैट इज द की टू ऑल सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स आपने कहा कि आप बहुत ही बड़े फिल्म फैन हैं तो सबसे बड़ा टेस्ट तो आजकल यही है क्या आपने वो काम किया जो करना हर कोई चाहता है लेकिन बहुत कम लोग कर पा रहे हैं डिड यू गो एंड सी द ऑडिसी टिकट्स मिले मतलब यू आर वन ऑफ दोस पीपल जो कि प्री प्लानिंग करते हैं दैट इज द ट्रू प्रूफ दैट यू आर अ बिग बिग फिल्म फैन
7: थैंक यू सो मच ऑफ कोर्स वी प्लान अबाउट लाइक 3 वीक्स अर्लियर देन वी शुड गो फॉर द सेम डे एंड वी फाउंड द टिकट एंड इट वाज आई कैन से द शो वाज कंप्लीटली फुल
8: या
7: एंड इट वाज अ फैंटास्टिक मूवी द मूवी वाज नॉट ऑल अबाउट द बैटल इट्स अबाउट द सर्वाइवल
8: सो दैट वाज अ
0: फैंटास्टिक एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट
1: स्टिल 36 डिग्रीज लो जाएगा अराउंड 33 ह्यूमिडिटी फिलहाल 59% पर
0: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान कतर KSA एंड बहरेन विजिट अल रास.me बिग 106.2

0: पैसे कमाने के लिए लिखते हो कि दिल बहलाने के लिए?
1: जो सरस्वती जी लिखाती हैं तो थोड़ा बहुत लिख लेते। अरे अंकल जी, लक्ष्मी जी की कृपा से पैसा तो इतना है कि धनतेरस पे आप ही की दुकान खरीद के आप ही को गिफ्ट कर दें।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हां जी, ये है बिग थ्रिल. वी प्लेइंग द 5 सेकंड रूल. फिलहाल बहुत काम की बात. इफ यू स्पेंड टू मच टाइम स्क्रॉलिंग टू फाइंड आउट द राइट रेंटल कार, यू हैव टू मीट सिया. सेल्फ ड्राइव्स AI कार रेंटल असिस्टेंट. जस्ट टाइप योर बजट, योर कार टाइप और एनी पर्टिकुलर प्रेफरेंस एंड सिया इंस्टेंटली आपके लिए राइट गाड़ी रेकमेंड करेगी. नो एंडलेस स्क्रॉलिंग, जस्ट अ क्विक एंड वेरी वेरी ईजी बुकिंग प्रोसेस. आज ही विजिट कीजिए selfdrive.ae. टाइम फॉर द फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर, अ गाना जिसने सोशल मीडिया पे तबाही मचा रखी है. यश कियारा अडवाणी, दिस वन फ्रॉम टॉक्सिक.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Filhal, ab Zameer with me. Hi Zameer, good evening.
2: Hi ma'am, how are you?
1: I am good, how are you?
2: Good evening, very good evening. Good, alhamdulillah. Just missing my wife.
1: Missing your wife?
2: Yes.
1: कहाँ गई हो?
2: Too much.
1: अरे
2: इंडिया
1: मोहब्बत हो तो ऐसी टू मच. ये आप सिर्फ सुनाने के लिए बोल रहे हैं कि सच्ची में याद आ रही है?
2: अरे सच्ची में आ रही है. एक एक लम्हा बहुत मुश्किल से कटता है.
1: ओए, कितने महीने हुए आपकी शादी को?
2: शादी को तो 5 साल हो गए.
1: 5 साल बाद भी आपको उनकी हर लम्हा याद आ रही है? उफ, फिर तो यार
2: बिल्कुल
1: ये तो अलग ही आश की अलग ही मोहब्बत है. लव मैरिज थी?
2: नहीं, अरेंज थी, खैर बाद में लव हो गई.
1: अरे वाह, मतलब अच्छी बात है यार. 5 साल तक आपका लव ऐसा है कि आप रह नहीं पा रहे हो तो भेजा क्यों, इंडिया नहीं भेजते?
2: बस यहाँ पर आपको पता है ना, जॉब इतनी है नहीं कि अफोर्ड कर सकूं.
1: अच्छा, आपने
2: सीधी बात,
1: लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज है आपकी. हाय, दैट्स रियली सैड. बट आई रियली प्रे आप इतनी मोहब्बत करते हैं तो ऐसा कुछ कमाल हो जाए कि वो भी आ जाए आपके साथ.
2: यस, आई एम ट्राइंग टू.
1: हो जाएगा. ऑल द वेरी बेस्ट. तो कितने फोन लगाते हो दिन में? कितनी बार वीडियो कॉल करते हो? मेरे बाबू ने खाना खाया.
2: मैं करता ही रहता हूँ. नहीं, अगर तो नहीं करता.
1: वो उठाती ही नहीं उठाती.
2: नहीं, वो उठाती है लेकिन उसकी वो मुझे कभी कभी इरिटेट हो जाती है. क्योंकि मैं हर टाइम कॉल ही करता रहता हूँ उसको.
1: घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब हो रहा है जमीर. 2-3 दिन कॉल मत करो, अपने आप परेशान हो
2: जाएगी. साथ यही हो रहा है.
1: नहीं, अपने आप परेशान हो जाएगी. मैं लड़की हूँ ना, मैं बता रही हूँ. थोड़ा 2-3 दिन कॉल मत करो. जब वो कॉल करे तो भी बोलो मैं बिजी हूँ. अपने आप जो है बोलेगी.
2: मैंने ये ट्राई किया था, ऑनेस्टली बताऊं आपको, लेकिन मैं 1 दिन से या 1.5 दिन से ज्यादा नहीं करता. नहीं, वो करती है, आज कॉल नहीं आई, लेकिन वो इतना नहीं करती जितना मैं करता हूँ.
1: मैं
2: नहीं रह पाता.
1: 5 दिन करो थोड़ा विल पावर. भी तो कोई चीज होती है कि नहीं होती है? पिछले देखो, टाइम पास करो. कभी कभार थोड़ी सी एब्सेंस बहुत जरूरी होती है जिंदगी में अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए. फिलहाल जमीर विल प्ले द 5 सेकंड रूल. इट्स अ फन गेम. यू गेट 5 सेकंड्स. आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज. 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर.
0: 5 second rule.
3: Oh yeah.
1: 3 ऐसे गाने जिनमें आशिकी आता है. अब आप इतनी आशिकी में हैं तो
2: आशिकी. अरे यार, टाइम तो नहीं आता कुछ भी.
1: 3
2: टाइम तो कुछ भी नहीं आता.
1: 3 रानी मुखर्जी की मूवीज.
2: कुछ कुछ होता है
1: और
2: दिल मर्दानी.
1: हाँ, और टाइम खत्म हो गया. और 3 ऐसी चीजें दैट आर येलो इन कलर एंड यू कैन ईट.
2: बनाना, कड़ी पकौड़ा और स्वीट.
1: और तीसरा क्या था?
2: स्वीट लड्डू.
1: तो बोलना चाहिए
2: स्वीट. बोलते
1: स्वीट लड्डू. 3 things दैट यू पुट इन योर चाय.
2: ओनली शुगर एंड चाय. मैं कुछ नहीं पीता.
1: अरे दूध भी तो डलता है, चाय पत्ती भी तो डलती है. चाय बनेगी कैसे पानी दूध?
2: मैं कभी नहीं जीत पाता इसमें.
1: कोई बात नहीं,
2: मेरा थर्ड टाइम है मैं आपको कॉल करने.
1: जिंदगी में जीत रहे हो यार. जो मतलब 5 साल बाद भी बीवी से ऐसे मोहब्बत करे जो बॉयफ्रेंड्स पहले हफ्ते में करते हैं, वो जिंदगी में जीत गया है.
0: 5 second rule.
3: Oh yeah.
1: देखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप हमेशा ही बड़ा खराब खेलते हो. बट ये मेरी ट्रिक ट्राई करना. 5 दिन फोन मत करो. अब 5 दिन बाद मुझे फोन करके बताना. दिन में 10 बार फोन आएगा वहाँ से.
2: ओके, 5 दिन बाद मैं 100% कर दूंगा.
1: मैं देखो, अगर ऐसा हुआ कि फोन नहीं किया और लड़ाई ज्यादा बढ़ गई तो मैं सिर्फ सजेशन दे रही हूँ. पता चले
2: लड़ाई तो नहीं होती क्या.
1: बढ़ जाए लड़ाई और उसने ब्लॉक वॉक कर दिया तो मेरे पास मत आना. मैं हमेशा अपने दोस्तों को बहुत खराब एडवाइस देती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं सिंगल हूँ. मैं चाहती हूँ वो भी सब सिंगल रहे. आप अपने रिस्क पे एडवाइस यूज करना, ठीक है?
2: आप तो विकी कौशल की दीवानी है.
1: आपको कैसे पता?
2: आपका शो रोज सुनता हूँ.
1: हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच. देखो, पर वो भी किसी और का दीवाना है तो कोई फायदा नहीं है.
2: जो हाथ ना लगे उसके पीछे भागना नहीं चाहिए.
1: वो कहते हैं ना, हमने दिल लगाया वहीं जहाँ दिल लगाना मना था हमेशा से. चलो, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड थैंक यू सो मच जमीर.
2: ओके, नाइस टू टॉक टू यू. थैंक यू सो मच.
1: यही है 5 सेकंड रूल. अगर आपने खेलना है, एक ही रूल है, फोन उठाना है, कॉल करना है 800-1062 पर.
4: यो यो यो यो.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: यूज करोगे तो 100% फाइन लगना है।
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: A phone holder is not your free pass to use your phone while you're driving. In Dubai, interacting with your device, even when it's mounted, can result in 800 dirham ka fine and 4 black points. Aapko batati hoon ki kab, kahan, kyun, kaise. तो सारी डिटेल्स सुनने के बाद ही सावधान रहें, चौकन्ना रहें और अपना फोन ड्राइविंग करते वक्त बिल्कुल यूज ना करें।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:09।
2: बॉलीवुड

0: मेरा सेंस अभी भी बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग

0: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, मैं हूँ मानसी, this is the big thrill. And देखो, मैं ना नई नवेली ड्राइवर हूँ, 3-3.5 महीने हुए हैं, तो मैं तो सारे रूल्स टू द टी फॉलो करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना साहब, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से भी नहीं लगता है, फाइन से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है और सबको लगना चाहिए. सो या, इफ यू आर समवन जिन्होंने फोन अपना माउंट करा हुआ है, फोन होल्डर पे रखा है एंड स्टिल यू यूजिंग इट, आपको फाइन लग सकता है. माउंटिंग योर फोन ऑन अ डैशबोर्ड होल्डर डजंट गिव यू द परमिशन टू यूज इट व्हाइल ड्राइविंग इन दुबई, स्क्रोलिंग, टेक्सटिंग, वॉचिंग वीडियोज or interacting with your phone in any way is considered distracted driving, even if it is securely mounted. Dubai's AI-powered traffic cameras can detect these violations from multiple angles. So, bach nahi paoge. If caught, you have to pay 800 dirham ka fine aur 4 black point hai. And it is, of course, designed to improve road safety and reduce distraction-related accidents. So, for all those who are thinking ki ye nahi pakad payenge kyunki maine phone aisi jagah mount kiya hai, ye AI cameras hain, inki nazar jo hai wo bahut tez hai. So, be very, very careful. Music loud.

0: Vamsi on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Friday की शाम है, फिलहाल I'm gonna take you back to the late 90s, okay? आज ही के दिन ये मूवी रिलीज हुई थी. अब मुझे ये मूवी इतने अच्छे से याद इसलिए है क्योंकि हमने फर्स्ट हाफ इस मूवी का मिस कर दिया था. As a kid, my mom used to take us, me and my brother, to every single Bollywood movie. That is why I love Bollywood so much. हम हर मूवी देखने जाते थे, but most of the movies के हम first parts and beginning जो है वो मिस कर देते थे. इसलिए I make sure when I go to the theater, मैं trailer भी देखूं. इस मूवी का almost first part हमने मिस कर दिया था, but still we sat through. All right. आज ही के दिन बैक इन 1998 ये मूवी रिलीज हुई थी. द लीड पेयर इन द मूवी वाज एक्टिवली इन अ रिलेशनशिप. इनफैक्ट इस मूवी की रिलीज के कुछ महीनों बाद उन्होंने शादी भी कर ली. ये मूवी एक अनऑफिशियल रीमेक है ऑफ अ वेरी पॉपुलर हॉलीवुड रोम कॉम कॉल्ड द फ्रेंच किस. इनफैक्ट अगर आप इसके टाइटल ट्रैक को सुनेंगे इस मूवी के, इट इज इंस्पायर्ड ब्रायन एडम्स के बहुत ही फेमस गाने से, हैव यू एवर रियली लव्ड अ वुमन. ब्रेक थ्रू हिट था ये जसपिंदर नरूला के लिए एंड उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था फॉर दिस मूवी. जो लीड एक्ट्रेस हैं उन्हें ट्रैवल से, स्पेशली एयरप्लेन ट्रैवल से बहुत डर लगता है, बट वो अपने फियांसे को ढूंढने के लिए इंडिया आती है. दीज आर योर हिंट्स एंड द लास्ट हिंट विच विल मेक इट वेरी वेरी इजी. अगर याद आ गया द मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, देन 800-1062 इज द नंबर टू डायल. यू कैन ऑल्सो सेंड मी अ व्हाट्सएप 0543091062 पर.
0: बीट 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae.

फ्रॉम द पास्ट टू वीक्स एवरी सिंगल वीकेंड मैं खुद को बोलती हूँ कि इस वीकेंड में पति पत्नी और वो दो देखूंगी, बट मैं वो लॉकअप की कलेश से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। आई एम इन लव विद द शो। एक तो आई लव रियलिटी टीवी, दूसरा ये नेटफ्लिक्स पे है तो इसमें कोई सेंसरशिप नहीं है। द काइंड ऑफ थिंग्स दे से, ओ माई गॉड, इफ यू लव रियलिटी टेलीविजन यू हैव टू वॉच लॉकअप, स्पेशली नाउ विद द रिबेल किड अपूर्वा मेकिंग एन एंट्री। अगर आप देख रहे हो तो आपको पता है हम कितनी बेकरारी से इंतजार करेंगे कब होगा कलेश श्रेया कालरा और अपूर्वा के बीच में। फिलहाल कमिंग अप इन जस्ट अ बिट राइट हियर ऑन बिग 106.2 द पीर ऑफ बॉलीवुड।

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसकी पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: इन्वेस्टमेंट था इस गाने का मूवी में. ओ माय गॉड, लव लव लव. 3.5 बार मैं देख चुकी हूँ, इतनी लंबी मूवी आधी बची हुई है. मैं कभी भी बीच में से शुरू कर देती हूँ. धुरंधर 2 इज जस्ट लाइक फ्रेंड्स, यू नो, जो फ्रेंड्स देखते हैं वो कहीं से भी एपिसोड शुरू कर देते हैं. आजकल मैं धुरंधर के साथ ये कर रही हूँ.
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: वैसे इमेजिन ये गाना आपकी ब्रांड न्यू एसयूवी में, मजा ही आ जाएगा, राइट? इमेजिन करने की जरूरत नहीं है. ड्राइव होम योर ड्रीम एसयूवी दिस समर विद जेटॉस अनबीटेबल ऑफर्स. वेट ऑन देम और 0% इंटरेस्ट. फ्री सर्विस पैकेज इंक्लूडेड है. 1 मिलियन किलोमीटर वारंटी. ईएमआई स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 96 दिरहम्स अ मंथ, दैट इज 966 दिरहम्स पर मंथ. विजिट जेटॉर शोरूम, दे आर इन अबू धाबी, दुबई, अजमान एंड अलेन. जेटॉर यूएई पार्ट ऑफ द एलीट ग्रुप. होल्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई.
1: Big 106.2.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: The beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parks dealer in the Middle East.
3: 35 degrees है, लो जाएगा 33 तक. फिलहाल ह्यूमिडिटी है 58% पर.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: birthday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life, or business, call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Good evening, यह बिग थ्रिल, मैं हूँ मानसी। I'm sure वीकेंड वाला मोड है आपका भी, मेरा भी। वैसे एक रिसर्च मेरे इंस्टाग्राम पे आती है, सारी रिसर्च बाय द वे, मेरा एल्गोरिथम बहुत ही कमाल है। कभी मुझसे मिलोगे तो मैं दिखाऊंगी। उसमें आम की शादी गाजर से होती है, बहुत कुछ होता है मेरे एल्गोरिथम में। बट कभी कभार ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्चेस भी आती हैं। सो दिस रिसर्च सेज पीपल हु ईट अ लॉट ऑफ स्पाइसी खाना आर ओवर कॉन्फिडेंट इन लाइफ। जो बहुत ज़्यादा मसाले, बहुत ज़्यादा मिर्च खाते हैं, वो ज़िंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट तो होते ही हैं, मतलब आई नो लॉट ऑफ पीपल जो कहते हैं अरे बिल्कुल भी मिर्ची नहीं है, अरे बिल्कुल भी मिर्ची नहीं है। बट मैं उनसे कभी अगले दिन पूछ नहीं पाई लगी कि नहीं लगी।

0: bringing in the weekend. Yeah, Big 106.2, the beat of Bollywood. While you're enjoying the music here, do not forget to follow us on socials. 106.2 Big FM. It is. वहाँ पे भी मैंने hints दिए हैं जो यहाँ नहीं पहचान पाए. I'm very disappointed. मुझे लगा कि आपको पता चल जाएगा the movie that I'm talking about. बहुत सारे गलत जवाब मुझे आए हैं. दिल जले पता नहीं क्यों.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Dil Wale Dil Jale, maine dono nahi dekhi hai, but the movie that I was talking about is an unofficial kind of adaptation of this iconic cult classic. It's a Hollywood rom-com called The French Kiss. Sanjana Shekhar ki kahani hai. Sanjana loves Rahul. Rahul se uski sagai hoti hai. Rahul jo hai wo India jata hai and he meets someone else. Wo apni sagai tod deta hai. Rahul ko samjhane ke liye Sanjana ko plane mein baithna hota hai kyunki use fear of flying hota hai. But wo baithti hai plane mein, use Shekhar milta hai and Shekhar jo use hai bolta hai ki wo use Rahul tak pahuncha dega and India mein use dhoond ke मिलवा देगा राहुल से. एंड इन द प्रोसेस दोनों को प्यार हो जाता है. द लीड एक्टर्स वर एक्चुअली डेटिंग इन रियल लाइफ. मैं बात कर रही थी काजोल अजय देवगन की. प्यार तो होना ही था कि जो आज ही के दिन 1998 में रिलीज हुई थी. इनफैक्ट ये जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ इसके लिए जसपिंदर नरूरा को बैक इन 1998 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था. इट्स बीन एजेस, इट्स बीन ईयर्स. यू नो व्हेन आई टॉक अबाउट दीज मूवीज मुझे याद आता है यार जमाने हुए देखी नहीं है. तो या प्रॉब्ली अ फील गुड वॉच दिस वीकेंड.

0: रेमो एंड जसविंदर नरूला की आवाज राइट हियर, मैं ये आवाज सुनते हैं 5 से 9। दिस इज द बिग थ्रिल मानसी। एंड अगर आप मेरी तरह हैं कि यू मिस मोस्ट ऑफ द मूवीज इन द थिएटर्स एंड देन यू कीप लुकिंग फॉर द ओटीटी रिलीजेस,
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: So makers ने officially announce नहीं की है डेट, but lot of reports that I was reading, they claim के officially Netflix ने right acquire करे हैं for streaming. I'm talking about Cocktail 2, and if reports are accurate, by the 14th or the 15th of August, ये movie OTT पे आ जाएगी, right in time before the long weekend. There's so many movies that now I have to wait for. Cocktail 2 तो अभी भी theaters में है, I can go and watch. It's just that कि मैं बहुत आलसी लड़की हूँ, weekend पे मुझे घर से नहीं निकलना होता है. I don't want to make any plans, I don't want to do anything. I don't know if it is just me या फिर आप भी ऐसे हैं, but I can't wait for this movie because it is Kriti Sanon and Shahid Kapoor. I loved them in Teri Baaton Mein, and B, it's shot in Italy. So yeah, I would love to watch this over the long weekend.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से भुलू भुलू करेगी तो धोपेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamu alaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
6: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
7: नहीं, ये तो मुफ्त है।
6: गुड, चलो फोन लगाओ।
1: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: तनिष बागची, संजू राठौर फ्रॉम धमाल 4। इंस्टाग्राम पे ना दो चार एवी रिव्यूज जो है मैंने मूवी के देख लिए, तो मिक्स रिव्यूज ऑफ कोर्स हैं, बट लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं मूवी में कोई लॉजिक नहीं है। कोई लॉजिक नहीं, कब से हम एंटरटेनमेंट में लॉजिक ढूंढने लगे यार।
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: You know, there was a time when we used to go to the theater to just relax and not look for logic, have fun, laugh. क्योंकि ये entertainers हैं और ये entertainment के लिए movie बनाते हैं, आपके science के exam के लिए नहीं। So yeah, I kind of liked the movie जो धमाल part 1, part 2, part 3, तो I'm sure I will love the part 4 as well. But once again, I am Alsi. I love watching movies. I'm just Alsi. But all time for me now to say bye bye. Main aapse milungi kal. Over the weekends, I keep you company with the big Bollywood countdown. I play for you the top 40 biggest hits of the week. So do not forget to tune in. And do not forget, if you're not following us on socials, please do that right now. 106.2 Big FM it is. You can say hi to me. I'm Mansi talking. Have a great, great, great weekend. I'm going to leave you with.

0: Big Chill, where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: आप चुप्पी को घर ड्रॉप करते हो और मैं आपकी गाड़ी से उतरती हूँ और मैं अपने घर जा रही होती हूँ।

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय
1: insurancemarket.ae
0: Love, lo-fi and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill. On Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: Thank you.
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
3: चार या
2: पांच?
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
1: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
5: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।